को सेना ने बोले एक बीघा दस कथा जगह धोने पूजा सुरक्षित भूमि पूजा धोने लगा जगाइसको तर जगह को भूमिका विचार कर वहां अज नपाउन विषय खबर में उल्लेख कर।

0: इसी प्रकार मेला में साक्षा हो साक्षात इसी प्रकार किसी वैष्णव साहित्य
1: सीखने के लिए

0: अवस्था भविष्य निर्माण गर्ने समय हो। खाद्य पदार्थको एक तरहको परिव्यूले मानसिक समस्या र पढाइमा असर पुर्याउने गर्छ। साथीको दबावमा होइन आफ्नो सपनाको पक्षमा निर्णय गरौं। पदार्थलाई खुल्ला खुला गरौं। समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थबाट टाढा बसौं। स्वस्थ र उज्यालो भविष्य रोजौं। रेडियो गुर्खा कार्यक्रमको सहकारीमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्सुवाबाट टेलिभिजनबारी सजेत।
1: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हामी प्रतिबद्धता घटी नागरिक स्वास्थ्य सेवामा सदस्य रूपमा केटीआईले यहाँ कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पदल प्रकारले कौशल्य अस्पताल बाँसकडीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गरी
0: अस्पताल सेवा
1: 24 घण्टा डाक्टरकै प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराए।
0: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच कैदिठा।
1: प्रत्येक दिन नसा तथा न्युरो सर्जरी, हार्ट जोन तथा जनरल सर्जरी, प्रसुति सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा जाँच करा जाए।
0: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा। सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भा। पढालाई शिशुको मुख बाँध बिना नसा दाब बुझक हात खुला अनि चलना बिरामी रोकनका फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी विधि बसे उपचार कैदिन्छ।
1: नसा तर्किलो बिरामी हुन्छ बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
0: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था देखि भा। असहाय नागरिक, एक करोड महिला, अनाथ बाल बालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुकरपुर सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था देखि भा। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसकडी शाखा 5 बाँसकडी बर्दिया पुरान पेट्रोल पम्प दक्षिण पाँगर।
1: सम्पर्क फोन नम्बर 084-00192-0084-00202 बाँसकडी बर्दिया संसदीय।

मुख्य सहयोग विशेषता अब खेल गांव पालिक हो सहयोग विशेषता अन्नपूर्ण

0: बढ़ता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी की बढ़ता प्रति निर्मित स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्व रूप में वृद्धि यहाँ का स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर बदलसे कौशल्य अस्पताल बासगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती अस्पताल से देना सेवा चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजोर नशा मुटू चेक जांच कैदा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़नी तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: चौबीस घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा त्यहाँलाई शिशुको मुखमा होइना नसा धाप गएर हात गरा अनि चलना बिरामी रोक्नका लागि फिजियोथेरापी तथा एकुजन्य थेरापी विधिपछि उपचार गरिदिन्छ
0: नसा धापले बिरामी रोक्ने किरा प्रेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपचार थेरापी से सफल उपचार गर्छ
1: चौबिस घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिन्छ असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था गरिन्छ कौशल्य अस्पताल प्रहरी बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसगढी बर्दिया संसदीय फोन

0: kapı var bu.
1: Bir numara. O da geldi.
0: Tamam. Sonra da bir kapı. Mert kapında koy. Bir de bu bir alır bir tane.
1: Niye geçin tamam. Öyle bir koy. O da sabır bir bay mı sen? He? Tamam.
0: Ya üstelik. Esa di pali pali ma bisa di kupai guarda, pre guarda, pre upo kupta dugo ya tu kiunza. Pascal bisa di liki ya mari pani, ontapa, mani, siutan su, matu, pani, to sama kwa bata manda, gombir asa kiunza. Bisa di ale kupani kwa kata, hami rai, gombir kata bu kwa kwa kwa.
1: Bisa di liki ya rizu kiunza yi kya mani?
0: Wumi, rasa di bisa di pre guarda, तो प्रयोग करें को पासवर्ड का तैयारी खाने में क्रीमर टाइम लगने टंकू दुखने मुर्सा करने अकार मोस्ट दुखने रंगों सारों में जैसा तब तैयारी में कैंसर क्यों नहीं तो पर स्वास्थ्य स्वास्थ्य में नहीं दिल का तैयारी से बचा रहे थे कि न सबसे
1: अरे नहीं इसमें तो हम लोग हमारे नहीं हुए ना किरा रास्ता आप तो पढ़े हुए
0: सुनो सही रास्ता एक बिसाडी को सकता जो भी सजा पर पड़ा तो बिसाडी को प्रयोग कर सकती है त्यसका धेरै विज्ञहरू छन्. त्यसै त तपाईँ तपाईँको परिवार र उपभोक्ता सबैलाई गम्भीरता पुर्याउँछ.

0: शरीर का न खराबी साग सब्जी फल फूल सहित स्वस्थ खाना बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना संसार दुई बरस स्तनपान
1: रेडियो टुटा कार्यक्रमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रज्ञाले चलचित्र जारी सन्देश
2: युवा सिटी

0: गरी खान जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे बुले हुआ मोटो रोग को जोखिम बढ़ाने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एउटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सलाह दिएको छ।
1: नियमित रूप में

0: जीवनात्रात निशामा रोगपछि बाँकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो पूर्वाधार केन्द्र सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी दलित मजाले हिस्सा लिन्
1: Thank you.

0: हमने विशेष दक्षिण अरुणोदय शिक्षक द्वारा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार व्यावहारिक प्रयोगात्मक तथा प्रविधिमुखी शिक्षा सुविधा सम्पन्न विज्ञान कम्प्यूटर र होटेल म्यानेजमेन्टमा अतिरिक्त क्रियाकलाप द्वारा प्रतिभा प्रस्फुटन तथा क्षमता विकास र 19 वर्षदेखि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा
1: सुने एक चौदह 21 4 4 3 पार्टनर हाई स्कूल।

अभी फैमिली को शव यात्रा हो तेरा को केन्द्र भाग में मानसों को विशाल भीड़ जमा साथ फैमिली अमेरिका रेजिडेंट कर हवाई आक्रमण को पहले दिन लिया थे उक्त शव यात्रा पूरे होना 10 घंटा भाग बड़ी समय लगने थाली अधिकारी उक्त जनसागर ने शक्ति विरोध प्रदर्शन के रूप में काम करने ठा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तीव्र गति में विकसित भइरहेको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बाट उत्पन्न हुन सक्ने संभावित जोखिम घटाउन र त्यसमा पनि विशेष गरी बाल बालिका को संरक्षण का लागि विश्वव्यापी रूप में सामंजस्यपूर्ण नियम बनाउन आह्वान गरेका छन्। राष्ट्र संघले नेतृत्व गरेको एउटा एआई